चीन के खिलाफ भारत नेपाल साथ डोभाल से बालेंद के राइट हैंड की क्या हुई बात। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नेपाल और भारत के रिश्तों की बात बहुत ज्यादा अहम हो गई है और खास करके इस मौके पर जब नेपाल में तिब्बतियों के कार्यक्रम को लेकर चीन डरा हुआ है। ये आप जानते हैं कैसे डरा हुआ है। चीन दहशत में है कि कहीं तिब्बत की आजादी की आवाज नेपाल में और ज्यादा तेज न हो जाए, क्योंकि जैसे भारत में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं ठीक वैसे ही नेपाल में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। और इन सब के बीच अजीत डोभाल के साथ नेपाली पीएम के राइट हैंड की एक सीक्रेट मीटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है और इसी वजह से ये चर्चाएं तेज है। नेपाल में भी इस सीक्रेट मीटिंग की खबर से जबरदस्त हलचल मच गई है। दावा यह किया जा रहा है कि नेपाली पीएम बालेंद्र शाह के करीबी सलाहकार कुमार व्यंजनकार यानी बेन चुपचाप दिल्ली पहुंचे और भारत के एनएसए अजीत डोभाल से बंद कमरे में मुलाकात की। नेपाली मीडिया में यह खबर सामने आते ही भारत और नेपाल दोनों ही देशों के कूटनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। हर कोई अब यही जानने में लगा है कि आखिर इस सीक्रेट मुलाकात के पीछे का असली खेल क्या है। और कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब व्यंजनकार बेन से इस मीटिंग को लेकर सवाल किया गया और उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो दौरे पर गए थे। नेपाली मीडिया ने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि कुमार व्यंजनकार ने नई दिल्ली में सीक्रेट यात्रा की। नई दिल्ली की गोपनीय यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से आमने सामने की मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को इस यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को बेन के इस दौरे का पता था। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीक्रेट मीटिंग पर सवाल उठाए तब लामिछाने ने साफ किया कि दिल्ली रवाना